说没有那我是那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那ए तम हा लाय अनंग वाय ता ताव लाव ने ता वा ना वे ता ले हे हे ला ता ए ता क्वा हम ए तो छे से को ले लो ए हे नोक नो पेने वे चोरो से पल में तबे बोल मना तबे पो ततने कश भाई न मिसे पतो तबे से तबवा हेतम न कुशने गोइने गया ओ वैसला सोने हेतम हालाय अनंगाय ताताओ लाने ता वा नवे ता ले हे हे ला हे हे अने हवा पे हे मे हो या तबे बोल मना ते से हे ओ ना फै अस्ता ले तो खाता मो न ये ओ मे ता ता ला ओ या ने बो बा Fova, Eme hoya, O kilta, Hamka pat kempo vaka, Hitam kabo, Tom ne, Nato ne, Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, elo, aya, he, aha, aha, aha, hey, hey, hey, aha, aha, aha, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, हे तम हा लाय अनंग वाय ता ताव लाव ने ता वा ना वे ता ले हे हे ला ता ए ता क्वा हम ए तो छे से को ले लो हे हे नोक नो क्वे ने वे चोरो से कल ने तबे बोल मना तबे पो तो ने कश भाई न मिस पतो तप से तपवा हे तम न कुसने कोई निंग ओ वैसला सुन वे हे तम हालाय अनंग वाय ता ता लाव ने ता वा ना वे ता ले हे हे ला हे एस अने हवा पे हेमे हो या तबे बोल मना ते से हे ओ ना फै अस्ता बोक ले तो खाका मो न ये अमे ता ता लाव या ने पोवा हेमे हो या ओ केवता हम कपट कंपो बके हे